0: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
1: यस टाइम चिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

0: सम्पर्क नम्बर 0 35 22 160, मोबाइल नम्बर 98 1 17 21 99। विश्वराम मल्टी स्पेशलिस्ट डेन्टल क्लिनिक, बनाउनु आफ्नो मुस्कान अझ मुस्कुरा।
1: Welcome, welcome, come on, come on. Scramble's on, have to shut it down with exclusives.
2: Amurta FM 91.6 megahertz, the pride of the nation.

91 सम्मानित बजरंग स्टील को TMT छड़ आईबीएम एंगल र च्यानलहरु प्रयोग शताब्दी सम्म ढुक्क हुनुहोस्। बजरंग स्टील, शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले साँझको 5 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: वेट वेट वेट

0: अहिले साँझको 6 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

सेका नबेबाट सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बीम एंगल र च्यानल प्रयोग गरी शताब्दी सम्म ढुक्क हुनुहोस्। बजरंग स्टील, शक्ति को नया अवतार।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।